0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp. 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस।

आप नाम जप करते हैं, ये नाम और कोई आदमी को एक सबक पढ़ा उस्ताद, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये कमो 1,24,000 पैगंबर से जो है कमो बेश इतनी तादाद भेजने का मकसद ये था कि ये जो इंसानियत है इसको एक दर्द, इसको जो है सही रास्ता, इसको जो रास्तों से जो है वो अपनी असल मकसद की तरफ करना। और क्या कि ये मिसाल में दे चुका कि बेशुमार ऐसे अकाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाए और उन्होंने उनकी जो अमली तफसीर है, तशरीह है, उनकी शर्त जो है वो नबी पाक सल्लम की जिंदगी बता। देखें एक मिसाल वैसे दे, तुम पर नमाज दी गई, नमाज फर्ज है तुम पर, इसी तरीके अब जो है ये जितने भी फराइज हैं या कोई ये तो कुकुलबाद है, में किस तरीके से है सलूक अच्छा करना है, अमान एक दूसरे के साथ इखलास चाहिए, अमान है वो बच्चे उनके साथ तल्लुक होना चाहिए, बीवी चाहिए, हमारा डोमेन उनका, यानी कहने का मकसद यह है कि ये मुकम्मल नबी पाक सल्लम जिंदगी मुताबिक हर एक चीज की जो है वो एक अमली तफसीर और तफसील बयान करती है। और फिर ये एक सिलसिला फिर वहां से चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से साहबा करम रज़ियल्लाहु अजमईन के वो उनकी जिंदगी का जो पातो देख वो नूरानी चमक देखी, फिर वो कर रहे और ये सिलसिला जारी सारी है और ये क़यामत तक चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा एक मौजू है, इसमें इतनी बातें हो सकती हैं कि मेरे जैसा बंदे के पास अल्फाज नहीं है, लेकिन जिस बात की मैं समझता हूँ कि मौजूदा में ज़रूरत है, हमारा मकसद यही है और यकीन उलमा कराम भी बयान करते हैं कि जो चीज़ अब जिस चीज़ से हम महरूम हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस पर जो है ज़ोर देना चाहिए। देखिए मिला हर जगह पर हो रही हैं, बेशुमार चीज़ें जो है हम कर रहे हैं इस काम के लिए, इश्के नबी एक प्यार मोहब्बत के सारे काम करते हैं, बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में भी देखें वहाँ पर भी जो है वो जंगलियाँ लगाई जा रही हैं, चराई किया रेस निकालते हैं, यानी सिर्फ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और लगाव जो है उसकी वजह करना या लोगों तक ये बात पहुँचाना। और आज आजकल तो मीडिया का ज़माना है, यकीन करें कि आदमी जो है उसको पता भी चल जाता है और चल चुका है कि ये मुसलमान जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, इनको सिर्फ जो बायसे अफसोस बात है से कि सिर्फ और सिर्फ इनको पता साल के एक दिन ही चलता है या कुछ दिनों में जाकर पता चलता है, क्योंकि साथ जो है हमारा जज्बा बिल्कुल जो है वो खामोश हो जाता है, वो जोश वो इश्क वो सब चीज़ें जो है वो शायद अपने आप से मंद पड़ जाती हैं। रमज़ान में तो जो है वो रहमत का आशरा है, बड़ी रौनक है मस्जिद के अंदर भी, बड़ा वो इत्मीनान है जी, बड़ी खूबसूरत जनाब बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक 5-10 दिन के बाद वो चीज़ें आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाती हैं। होना तो ये चाहिए, ये मैं एक ज़ाहरी मिसाल दे चुका कई बार कि आपने और तो मुकाबले आपने देखे होंगे, बाकी मुकाबले तो खेलों के होते हैं, लेकिन अगर आप दौड़ के मुकाबले देखें जो 5,000 मीटर की है, 2,000 है, 3,000 है, तो उसके अंदर जो है एक और दो और या चार जो जिस

कॉलेज में सारे लोग जा भी नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में सारे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जब वो बच्चे जो हैं जो मैट्रिक की तालीम हासिल करेंगे, जितना उनके पास बेसिक नॉलेज जो है वो अपनी इन जो हमारे राबर गुजरे हैं, हमारे जो ये लोग जो है वो बानिय कौम हैं, बड़े बड़े हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जब इनकी इनके पास मालूमात नहीं होगी तो वो ये लोग उनको मुतसर कैसे करेंगे। तो लामा साहब की मख्सार जी शायरी छोटी मोटी नज़में, वो बस जो है वो पहाड़ और गलहरी और इस तरीके से छोटी छोटी नज़में जो है जो एक दुआ जो है वो शामिल कर ली। फिर बड़ी मज़े की बात यह है कि हम भी पढ़ते रहे हैं, फिर वो जो उस्ताद हैं हम भी इस फील्ड में रहे हैं, लेकिन उस्ताद ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर उस्ताद जिम्मेदारी पूरी करता और यही जवाब शिकवा जो है उन बच्चों को सही सिखा बांगे दरवाजे किताब पढ़ देता, मैं समझता हूँ एक दो चंद शेर जो है उनकी सही तशरी जो मकसद शायर का वो बयान कर देता, तो फिर भी इस कौम को आप जिद मुख्तलिफ तरीके से पाते। बस न समझाने वाला और आगे समझने वाला भी कोई नहीं है, समझाने वाले भी ख़त्म हो गए, समझने वाला भी कोई नहीं है। एक होता है ना बंदा, चलो समझाने वाला एक नहीं मिला, दूसरे वो तलाश करता है। पुराने बुजुर्गों को देखे ना जी, कहाँ से कहाँ तक तलाश नहीं पहुँचे, और क्या कौम छोड़कर जिन बुजुर्गों के बारे में हम भाई वो बाबा है कुछ नहीं। आज तो ये हो रहा है ना, बाबा तो है कुछ नहीं, बाबा है कुछ नहीं। आज हम एक दूसरे के घर इसलिए जाते हैं किसी मकसद मतलब के लिए, कोई कौन है हमारा कोई काम होगा, लेकिन वो लोग थे वो इन्हें इस्लाम के लिए उन्होंने जिंदगी उनने जिंदगी किस लिए कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी इतने सफर किए। हदीस मुबारक गठी हो रही हैं जी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम हो रहा है, तालीम इल्म सीखा जा रहा है। क्या हम इतनी तकलीफ हम अपने आप पर बर्दाश्त कर सकते हैं? बल्कि आप असाब उन लोगों का करना शुरू कर, असाब भी आपने की जरूरत है उन लोगों का, उनके अल्लाह ताला को जो इज्जत तकरीम दी है तो उनके पर खा के बराबर नहीं पड़ता। आप साहब हमने कम अपनी हमारी औलादें कहां पर पड़ी है, हमारी इज्जत साहब इसका करना है। ये चीजें एक दो दिन चंद दिन के लिए चमक दमक जो है वो थोड़े दिनों के लिए होती है, लिहाजा आपको चमकाना है जो बिल्कुल तारीख हो चुका है। तो अल्लामा साहब की जो बात हम उसको लेकर चलेंगे, और अल्लामा साहब ही जो है बस वो बात वो थी कि ना हम समझ भी ना सके, बस वो ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। पर अल्लामा ये है वो तरानाई मिली, ये मैंने कहा था कि 1905 के अंदर जो है उन्होंने तरानाई हिंदी लिखा, फिर इसके बाद जब वो अलग अलग को एक सोच पैदा हो गई कि वो दोनों मुल्क जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर अलग अलग, तो फिर जो है वो ये 1910 के अंदर जो है ये तरानाई मिली बिल्कुल उसी वजन के मुताबिक लिखा जो तराना हिंदी लिखा था। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी वो तराना हिंदी जो है वो लोग पढ़ते हैं, वो अपने मुल्क की जो है जब वो इज्जत की बात करते हैं, तकरीम की बात, तो अपने वो तराना पढ़ते हैं। उन्हें ये नहीं किया कि तराना नकार दिया, क्यों कि वो लोग पढ़े लिखे, उनको पता है कि ये बात जो है वो हमारे अल्लामा साहब को वो समझते थे। तो बहरहाल जो है वो यहाँ पर जो अल्लामा साहब की बात जो है वो ये थी कि चीनो अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तो ईद की अपना सीनों में आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत में प्यार हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा, तेगों के साए हम पक कर जवां हुए हैं, खंजर इलाल का है कौमी निशान हमारा। यहां तक हमने कोई बात की थी तो हम बस एक दो शेर आगे पढ़ते हैं, टाइम भी इतना नहीं है। तो फरमाया लम्हा साहब फरमाते हैं कि मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से ले रवा हमारा, थमता न था किसी से सलेरवा हमारा, बातल से दम
رہنے والے آسمان ہی ہم باطل

सो बार कर चुका है तू इम्तहान मारा, ए गुलिस्तान उंदलस वो दिन है याद तुझको, ए गुलिस्तान उंदलस वो दिन है याद तुझको।

अपना इस नाम से बाकी आराम जहां हमारा, इस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। बरल जी, मैंने ये दो तीन शेर जो है आपकी खिदमत पेश किए हैं, टाइम की बड़ी कमी है, रामा साहब की एक एक बात से इतनी बातें निकल आती हैं कि बस मैं तो बेबस हो जाता हूँ, और वो बात जो असल पैगाम होता है वो वहाँ पर ही रहता है। पर अल्लाह पाक जो है वो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लामा साहब की कब्र पाक जो है वो उस पर रहमत और बरकत नज़ुल फरमाएगी। इसलिए बाबा कौम और जितने बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह पाक उनकी सब की मगफ़रत फरमाए, और उनकी जो है वो कब्रों पर अल्लाह रहमत और बरकतों का नूर नाज़िल फरमाए। देखें, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, आज तो हम इस जो है वो यकीन करें ऐसे नाशुक्रे लोग आज पैदा हो चुके हैं कि जो अपने बड़ों की उस बात को, उनकी मेहनत को, आज तो यहाँ तक कि लोग अपने अब्बा जी के बारे में कहना शुरू कर देते हैं कि अब्बा जी ने भी क्या ज़िंदगी में किया है। यकीन करें, बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़े अफसोस का मुकाम है कि अगर हम कहें कि हमारे बाबा जान ने, हमारे दादा जान ने, हमारे बाबे ने पाकिस्तान बनाया, हमारे फलाँ ने ये किया, कुछ नहीं किया उन्होंने जी, वो ये करते तो बेहतर था। अब देखें उसकी चौथी पांचवी दसवीं नस्ल से आने वाले लोग जो हैं उनको मशवरा दे रहे हैं। ये बस ये जो बात है यही था बंदा, तो बस बंदा जो है रास्ते पर चल पड़ता है। आज दुनिया तरक्की इसलिए कर रही है, उनकी बातों से सीख रही है, उनसे उनकी बातों से जिस आदमी ने भी सीखा। मुस्लिम आई हुआ काफर तो मिले उरो कसूर, अल्लामा साहब ने कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम बंदा है वो भी इस्लाम तरक्की देगा। देखा नहीं है दयानतदारी, अदल। आप देखें क्या ये जो दूध फिर वो बात फोकस हो जाती है, असल में माजरत जो है वो ये है कि जो हम एक चीज़ ऐसी जो आगे नज़र आती है ज़्यादातर बात उसी को जो है वो, वैसे फ़र्क किसी जगह पर भी नहीं है, फ़र्क किसी जगह पर नहीं है, लेकिन दूध के अंदर पानी मिलाने वाला जो है ज़्यादा मशहूर है जी। अब देखें जी, मैं समझता हूँ कि क्या यही ये जो चीज़ हम कर रहे हैं जिनको पता इसे मिलावट भी हमें से नहीं है। आज हमें पता मन गशा वलैसा मिन्ना, नबी पाक हदीस मुबारक पढ़ते भी हैं, उलमा करम पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, लोगों हर आदमी को पता है, बच्चों को पता है, हमारे जो मैट्रिक के बच्चे हैं 15 साल के, पता है लोगों को ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या ये याद है उनको। लेकिन जब मिलाते हैं दूध के अंदर पानी या और चीज़ें मिलावट करते हैं, आज तो हर चीज़ के अंदर मिलावट हो चुकी है, क्या ये क्या वो जिसे मिलावट है कि वो मुसलमान नबी समझा कि मेरी वो समझे फारग है। अब कहने का मकसद ये है, आज देखें अगर फर्ज करें उसका मतलब ये है कि उसने मिलावट की, वो एक दायरा से निकला। अब एक आदमी वो मानता नहीं है, वो अपने मजहब पर चल, लेकिन मिलावट नहीं करता, वो कहता है नहीं ये दूध जो है ये एक जानवर है वो प्योर देता है, एक असल चीज़ देता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, बड़ा एक अल्लाह का नूर है, बड़ी साफ, बड़ा शफाफ, बड़े एनर्जी वाला, इसके अंदर बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर जो है वो ताकत देती हैं, ये इसके अंदर को मिलाने की चीज़ें। हालांकि ये जो लोग पास्चराइज वगैरह करते हैं ये इनके मुख्तलिफ साइंसी लिहाज से है कि मतलब है दूध इस किस्म का, इसमें कोई मिलावट उस किस्म की चीज़ ये हमारी तरह से नहीं करते। अब मुझे ये बताएं इस बात पर जब वो लोग अमल करेंगे तो उनको फ़ायदा तो होगा, उनको फ़ायदा तो होगा, उनको मुनाफा भी होगा, उनको इज्जत भी मिलेगी। जब हम एक दिन ही अमीर होना शुरू होंगे जी, क्या ना क्या यार अफसोस है मुकाम है कि मुसलमान यहाँ तक पहुँचा जिसको पता है कि राज़िक अल्लाह की दात है, फरमाता है रब है, फरमाता है वल्लाह खैरुर राज़िकीन, मैं रोज़ी देने वाला हूँ जी, सबसे बेहतर रोज़ी अल्लाह फरमा में देना हो, उसके बावजूद भी हम रोज़ी के लिए फिर वो रोज़ी बच्चों को खिला रहे हैं, फिर वो रोज़ी जो है वो आप दोस्त अहबाब को खिला रहे हैं, फिर वो रोज़ी जो है वो बेशुमार, अब वो झूठी सच्ची जो इज्जत है 2-4-10 दिन तो रहती है, फिर वो एक दिन होता है ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से जब जाने जब इंसान यहाँ से जाता है उसके दौरान भी लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा जनाब फलां है। मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर किसी जगह पर कोने के अंदर एक आदमी छोटा सा चाय का होटल बनाता रखता है
उसका वो टोल जो है वो है और वहाँ पर वो चाय असली चाय सही अच्छी प्योर देता है, तो वो उसकी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया पहुँच जाएगी, उसकी खुशबू है। लेकिन जब ये झूठ और फ्रॉड है कितना अर्सा चलेगा जी? ये आज ऐ मुसलमान हमारी हालत ये है, आज हम जिस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला के हमारे अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हैं, मुसीबतें तकलीफ़ें भी इमाम पर है,

अंदर जो है वो बत्ती रोशन हो जाती है, ये करंट खत्म किया जाए, बिजली खत्म की जाए, ये निज़ाम फेल किया लोड शेडिंग जाए जी, इसलिए इस वास्ते लोड शेडिंग वाला सिस्टम कट करो, तो इस वास्ते जो सोलर शोलर लगाओ। ये अल्लाह फरमाया जी कि देखो उन्होंने किया था कि तेगू के साथ हम पर लगवा हुए हैं, तेगू के खंजर अलाल का है कौमी निशान हमारा। अल्लामा साहब जो है वो उस बच्चे की मिसाल दे रहे कि हम कैसे पले पो, हम कैसे जवान हैं। अच्छा यहां पर एक नुक्ता है जी, नुक्ता ये है कि आज क्या हम अपने बच्चों को ये पाल पोस करते हैं, क्या इस तरीके से करते हैं, क्या उनके अंदर सख्ती से उनकी बाल पाल पोस करते हैं या आसानियों के लिए मुहैया करना शुरू करते हैं। अब के अंदर ये बड़े बड़े बड़े लोग थे, बड़े अमीर कबीर लोग थे, बच्चे पैदा हो जाए तो उनको जो है वो दूर दराज जो है वो औरतें आती हैं और छोटे छोटे बच्चों को दूर दराज अंदर लेकर चली जाती, दूर दराज लेकर चली जाती। जिस तरीके से नबी पाक सल्लम को भी माई अलीमा सादिया रजी तरह उन्होंने वो लेकर चली गई। अब ये रवाज वजह ये थी कि वो अब वाले जो थे वो अपने बच्चों को जरा जवान ताकतवर देखना चाहते थे, बड़ा मजबूत देखना चाहते थे, मुश्किल का मौका देखना चाहते थे, वो उसके अंदर जो है वो अच्छी किस्म के अब नशोनुमा हुई देखना चाहते थे, इसलिए बच्चों को दूर दराज भेजते। वो लोग वहाँ पर बड़ी सख्ती से बड़ी मुश्किल बर्दाश्त करते। आज देखें इंग्लैंड का बच्चा जो है हमारे यहाँ बच्चा को है वो हम उसको जो है पाकिस्तान या इसी सिंध या फर्ज कर दूर दराज ऐसे इलाके में जाकर छोड़ दें, जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं बड़ी फिल्मों के अंदर बच्चे जो है बड़े गरीबी और इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जो है वो अगर बच्चे हमारे वहाँ जाकर पले तो फिर वापस आए और फिर उनको पता चले कि ये वाकई ये बात, वो बच्चे मजबूत होंगे हमारे बच्चे। आज हमारा पाल पोस का निज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, फिर ये पाल पोस का जब जिम्मेदारी फिर आती है तो फिर माजरत से जब जिम्मेदारी किसी पर डालते हैं तो फिर जिम्मेदारी वाले जो है बड़ा वो भी नाराज़गी हो जाती है कि वालदेन से जिम्मेदारी ज़्यादा किसकी है जी। अल्लामा साहब ने फरमाया कि वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए इस्माइल को किसने अदाब फरजंदी। भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम को हैं वाला साहब आ रहे हैं और कहते हैं मैंने खा कि मैं जो है वो तुझे ज़बह कुर्बान कर रहा हूँ जी। अब वो बेटे मान कर गुजरी जो अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि वो जो बच्चे के अंदर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो ताबेदारी, वो जो वालद साहब के साथ उनका तल्लक, वालद साहब की वो जो कद काठ बढ़ाकर बयान करना, उनकी जो ट्रेनिंग तरबियत थी वो किस तरह थी, तो फरमाया वो फैज़ान न या तो कोई या फिर मकतब की करामत थी या फिर जो माई हजरा रजी जो है वो उनको ट्रेन कर रहे थे कि आपके वालद साहब बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, वो आएंगे हमको लेने के लिए, वो यहाँ पर आएंगे। बात ये है आज वहाँ पर उन वहाँ पर पहुँचना उनके पाँव की खाक के बराबर हम नहीं हो सकते, लेकिन ये जो अदाब फरजंदी है ये सिखाना, जिन्होंने सिखाना है वो उनको सिखाना पड़ेगा, और नहीं सिखाएंगे तो समझे वो ये भी किसी न किसी लिहाज से ये गुनाह का मुर्तकिब है। बात यह है कि हर आदमी का एक डोमेन है, हमारे घर के अंदर बीवी और मर्द हैं, बीवी और खावंद हैं, उन दोनों के अपने अपने डोमेन हैं। हर आदमी को जो है एक मुकम्मल ज़ाबता इस्लाम ने एक जो है वो हर आदमी की अपनी ड्यूटी लगा दी है कि दाखिल किसके पास हैं, खारजा अमूर किसके पास हैं, खजाने किसके पास हैं, ये सारे का सारा वो इंतजामिया किसके कंट्रोल में है, वो सब चीज़ें हैं। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे के डोमेन में दाखिल होना पसंद करते हैं, हम अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम अपने पर तनकीद दूसरे पर तनकीद करते हैं, ये तो इसलिए तो तरक्की नहीं है। जब तक इंसान अपने आप को ना देखे, अपने आप को ठीक ना करे, वो इस वक्त कोई आदमी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह पाक में अदायत सी फरमाई जी, बात फिर वो इधर उधर हो गई है, किसी से सैले रवा हमारा मगरब की वादियों में गूंजी हमारी। ये अल्लामा साहब तारीख के एक जो है वो तारीख का एक वर्क जो है पलट रहे। तो एक शेर मैंने भी एक लिखा था कि खोल माजी दे मुस्लिम दरीचियां, खोल माजी दे मुस्लिम दरीचियां, तेनू फिर मुस्तकबिल ते आल लभे।

0: एक ही चादर।
1: वेलकम बैक, खुश आमदेद तमाम सुनने वालों को। ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हों, टेक्स्ट कर रहे हों, तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती। तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी आप, अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7
2: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your number one for news in Sheffield, Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

जी, मौजूद सामीन इकराम, प्रोफेशन रेडियो 14:13 AM पर आप इंतहाई अकीदत भरी और मोहब्बत व अकीदत से भरी और बेहद जिसे कहते हैं मुकद्दस एक महफिल पाक जो बिलखसूस जुमा करीम के लिए हमने तैयार की है, तो आप समात फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम से डेरों डेर दुआ है कि रब्बे करीम हमारी ये बाबरकत महफिल पाक जो है वो हमसे कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोज़ज़ो मोहतरम सामईन इकराम, ब्रॉडकास्टेशन रेडियो 14:13 AM पर जुमा करीम की इस खसूसी नशियात में आज हम दुरूद व सलाम का सिलसिला जो है कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप सबको पता है कि जुमा करीम के दिन दुरूद व सलाम की किस कदर इम्पोर्टेंस और अहमियत है। ये इसके लिए एक अलहदा से अगर हम बयान भी तरतीब दें तो वो भी मेरा ख्याल है कि वक्त जो है कम पड़ जाएगा, इसकी इतनी अफादियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू की तरफ बढ़ूँ, बयान कर दूँ कि हमारी वेबसाइट है broadfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामईन इकराम, इस वक्त भी मेरे पास दुरूद व सलाम जो है इंतहाई खूबसूरत, और मैं चाहती हूँ कि आज जुमा करीम के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत दुरूद पाक करें। तो आइए एक और दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

मोहतरम सामईन इकराम, ब्रॉडफ़ोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर आप जुमा करीम की खसूसी नशियात आशा अख्तर के संग समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 और दूसरा हमारा नंबर है 07800599563 पर भी आप हमसे राबता कायम कर सकते हैं। आप गाड़ी में भी बैठे हुए हैं तो DAB डाक पर जाएं और हमारी खूबसूरत नशियात जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा आप स्मार्टफोन में भी हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका फ़ायदा भी ये होता है कि हम जहां कहीं भी हैं, सफ़र में हैं, घर में हैं, घर के कामों में बिजी हैं, इधर उधर हम लगे हुए हैं, तो मोबाइल जो है वो अपने साथ साथ हम उसको भी सफ़र करवा सकते हैं। जी बिल्कुल मज़ासामीन इकराम, नहायत अकीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम का सिलसिला भी जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हमने दुरूद पाक का एहतमाम किया। तो इससे पहले कि हमारा फिर ब्रेक का टाइम हो जाए, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

एक खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत ज़्यादा हमें माशाल्लाह इस्लामिकली हमें इसमें मिलता है, जिसे आप कहेंगे कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने वो जुमा की नमाज के लिए आपको पता है हुक्म सादर फरमा दिया है कि सब कुछ छोड़ के मेरी याद के लिए आ जाओ, और फिर वो भी आपको पता है सूरह जुमा में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद रब्बानी फरमाया है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस का हमें वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, और फिर आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन जो है इसके इससे रिलेटेड हमें बहुत सी प्यारी प्यारी अहादीसें मुबारक मिलती हैं। तो सामईन इकराम, फिर जुमा करीम हो और हम दुरूद सलाम का एहतमाम न करें तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो बात नहीं बनती है ना। बात तो जब ही बनती है ना कि जब हम दुरूद सलाम पढ़कर जो खुद एहतमाम अल्लाह पाक फरमा रहा है जिसका कि वो कुरान पाक की आयत मुबारक, फिर वो गुफ्तगू बड़ी तवील हो जाएगी उसका मफहूम के जिसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। तो अहले ईमान तुम भी उन पर दुरूद सलाम पढ़ा करो, तो अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये आप सबको और हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के इस माशाल्लाह आयत मुबारक के बारे में। तो जिस बात का एहतमाम मेरा अल्लाह पाक फरमा रहा है, जिस वो कहते हैं कि एक खूबसूरत सी अदा को, एक खूबसूरत, मैं वो अल्फाज कहाँ से कीमती और वेरी प्रेशियस अल्फाज कहाँ से लेके आऊँ इतने अनमोल के, जो मेरा अल्लाह पाक दुरूद व सलाम खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ रहा है, तो फिर हम क्यों ना एहतमाम करें। यही हमारी ज़िंदगियों का खासा, अल्लाह पाक रखे, आमीन सुब आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन इकराम, टॉपिक तो आपको पता है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस को लेके और खूबसूरत खूबसूरत जो भी पूरा कुरान पाक खूबसूरतियों से मरसा और जिसे कहते हैं भरा हुआ है, भरपूर है खूबसूरतियों का एक लाजवाल लामतनाही सिलसिला है। मैं कुर्बान जाऊँ हदीस मुबारक इतनी, फिर वो अजराहे गुफ्तगु जिसे कहते हैं मेरे पास आती जाती, मैं करती जाती हूँ तज़किरा, तो एक आज आयते मुबारक जो है बिलखसूस, फिर मैंने कहा कि चले आज आप अगर टॉपिक के तौर पर रखना चाहते हैं तो एक ये कुरान पाक की जो है आयते मुबारक मेरे सामने है। तो इससे पहले ये आयते मुबारक जो है ये तिलावत मैं अब आपके सामने करती हूँ, तो तिलावत सुनने का आप शर्फ हासिल करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तिलावत व तर्जमे के बाद फिर इसकी डेफिनेशन में भी चलते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं जी। आप सब फरमाएं, हम भी इंशाअल्लाह ताला, फरमाना कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कि आप कहते हैं कि गुफ्तगू करें, तो गुफ्तगू फरमाना भी बहुत प्यारा लगता है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा में सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसकी हर चीज़ पर कुदरत है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। वहुवल अजीजुल गफूर, अय्युकुम अहसनु अमला, वहुवल अजीजुल गफूर, और वो बड़ा जबरदस्त है और अजीज जबरदस्त है, अल गफूर वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। कुर्बान जाओ, हिकमतों से भरपूर आयते मुबारक, पूरा कुरान हिकमतों से भरपूर। मुझे सामईन इकराम, ये आयते मुबारक जो है सुभान अल्लाह, सूरत मुल्क की आपको पता है कि ये आयत मुबारक जो है तिलावत की हैं आपके सामने, तो यकीन करें मुझे सामईन इकराम के दिलो दिमाग के गुंचे वाह हो जाते हैं कि वो बाबरकत है। अल्लाह ताला शुरू ही से देखे कि क्या किन अल्फाज से मुखातिब है कि अल्लाह ताला बाबरकत है, अल्लाह के नाम में बरकत है, वो बाबरकत हस्ती है मेरा रब, जिसके कब्जे में सारी सल्तनत वो रब्बुल आलमीन है। कुर्बान जाऊं, वही तो बरकतों का वो जाहरी बात है, बरकतें उधर से ही आ रही हैं सुभान अल्लाह, और वो हर चीज पर कादिर, हर चीज पर,
वहुआ अला कुल्ली शेयन कदीर, वो मेरा रब हर चीज पर कादिर। और अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, क्यों अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी और मौत दे दी है, इसकी अभी हम फिर आगे चलते हैं तफसील में, कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी और मौत दी इसलिए कि वो देखे, वो परखे, वो जांचे कि तुम में से उसने इंतखाब करना है कि एहसन अहसन अहसन अमल वाला कौन है, इसलिए दी है जिंदगी। और वहू अल अजीजुल गफूर, वो बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। कितनी मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं कि कुरान पाक की ये वाबरकत जब मैं तिलावत मैंने करती हूं, मैं देखती हूं मेरी फहमो इदराक उतनी कहाँ है कि, लेकिन वो जबरदस्त है, वो जिसको चाहता है तिनके को उठा के बुलंदियों पर ले जाता है, वो चाहता है ना समझ को, वो उसकी दी हुई अकलो फहम के वो चाहता, वो जब अता करता है तो दिलो दिमाग की जब खिड़कियां खुलती हैं तो एक तरफ तो वो फरमा रहा है वो बड़ा जबरदस्त है, दूसरी तरफ वो फरमाता है कि बख्शने वाला है, वहुअल अजीजुल गफूर, कि वहुअल अजीजुल गफूर, कि वो जबरदस्त है और बख्शने वाला। बस सामईन इकराम यकीन करें कि मैं अभी बख्शने वाले से मुझे याद आ जाता है, बहुत से ऐसे मैं कहूँ हल्का से लोगों के गुरु से वास्ता पड़ता है, बहुत से दिल दुख भी जाता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, तो खुद अपने आप को ही चले हम ले लें, हम कैसे मामलात रखते हैं अपने रब के साथ। ये इस तरफ भी मैं आती हूँ कि मैं किसी की बात करूँ कि वो इतना खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं, नमाज कुरान की नहीं, होश खबर नहीं है, बस जो भी है, बस अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, बस उनके मुंह से सुन ले भैया आप, वो फिर ये हो जाता है कि हुकूकुल्ला नहीं, अल्लाह ताला हुकूकुल्ला माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ करेगा। आप लोगों ने खुद ही इसकी डिवीजन कर ली है, इसको डिवाइड कर लिया है टू ग्रुप्स में, टू कैटेगरीज में, लेकिन इसकी समझ फहम इदराक में हम जाना पसंद नहीं करते। सामईन इकराम, बात फिर वहीं पे आ जाती। आप यकीन करें कि ये अल्लाह ताला की देन है कि वो जिस दिल के ऊपर अपनी नरमी पैदा कर दे और जिस आंख को अशकबार कर दे, ये उसकी अता है। और मैं वाकई जब इतनी गहराई से इन आयात मुबारका में जाती हूँ तो खुद के आमाल पर भी शर्मिंदगी होती है, और हम लोग क्या अपनी मनमानियों पे लगे हुए। एक बात सुनने में मैंने अभी एक तो ये बयान की कि जी हुकूकुल्ला अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, हुकूकुली बात, ये इसका आप ज़रा मुझे डेफिनेशन बता दें कि आप किस सेंस में इसको लेते हैं। फिर आप कहते हैं आप और मैं आपसे भी आपकी आराज जो है आरा सुनना चाहती, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने तो वो तो बाबरकत है जात, खजानों की खजानों से भरपूर है, और अगर कोई ना शुक्रिया अल्लाह ताला की कदरदानी नहीं करता तो वो तो खुद बेनियाज है, लोगों से बेनियाज है। यहां पे जो हुक्म है वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह जी खलक अल मौत, और वो हर चीज पे कादर है कि वो तो फिर ठीक है तुम हम सब की कुताहियां गलतियां माफ करे, लेकिन हम तौबा करने वाले, मेरे मौला हम डर जाने वाले मसीह हैं। अगर ये कहते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन हमारी तरफ तवज्जो करता है, या अल्लाह गलतियां हैं, या अल्लाह ख्वार हैं जो भी हैं तेरे बंदे बंदियां अल्लाह तुझसे मांगने वाले, इसीलिए आज महफिल सजाई, मौला तू करम कर दे, रहम कर दे, करीम है, हम मानते हैं हमसे गलतियां होती, मैं मानती हूँ मौला गलतियों का, खता की पुतला हूँ अल्लाह, मगर तुझसे रजू करने वाली हूँ जो तुझे बड़ा पसंद है, माफी को तू पसंद करता है। और खुद ही फरमाता है कि बेशक वो बहुत बख्शने वाला, जब हम उससे बख्शिश तलब करते और अपने अमाल को उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाते। और फिर अल्लाह ताला यहां से मैंने हर चीज पर कादिर है कि उसने मौत और जिंदगी क्यों दी है कि वो देखे कि कौन अच्छे अमल वाला है। अय्युकुम अहसनु, अय्युकुम तुम में से अहसनु अमला, अहसन अमल वाला है, वहुवल अजीजुल गफूर बहुत बख्शने वाला है, बड़ा जबरदस्त बख्शने वाला है, अहसनु अमला। बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि
پہلے ادوار میں یہ تھا، پہلا دور ایسا تھا، اب کا دور ایسا ہے ویسا ہے، آپ سب کے سامنے ہر وقت ہر کوئی اپنی سینس میں بات کرتا ہے۔ سامعین اکرام، ابھی میں تھوڑی سی یہ گفتگو کے بعد آپ کی کال ہمیں موصول ہو رہی ہے۔

जी मोहतरम सामईन इकराम, देखिए हमारा कुरान जो है वो हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। माजर चाहती हूँ, वो तो कॉल का सिलसिला है, तो माशाल्लाह आप करें बनाएं कॉल, आपका राइट है, आपका प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, तो सिलसिला कलाम जो है वहीं से शुरू करती हूँ कि वही है जिसने वो ज़ात अल्लाजी, वो ज़ात पाक कुर्बान जाऊँ, क्योंकि खलक खलक किया, पैदा किया, क्यों किस लिए, केवल हयात हयात जो है जिंदगी अता की, किस लिए जिंदगी और मौत, खलक अल मौता वल हयात, कि मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो देखे कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। अब कुरान तो फैसला कर चुका है, कुरान तो आज से 1400 साल, कहते कितनी सदियां पहले जो है हमें एक लाहे अमल, और अगर हम देखा देखें तो जब हम पैदा हुए हैं, हमारे पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम कर दिया, हमें समझा दिया कि जिंदगी जो है ये, आप देखें यहाँ पे बहुत से, मैं जो अदयान है उनका किसी का जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे अपने दीन की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, तो मैं इसी दायरे में रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर वो तो बहुत बात बढ़ जाएगी, आगे फैल जाएगी, और जिसका हमारी आज की गुफ्तगू से, हमने तो देखना है कि हमारे घर का सिलसिला जो है, चूल्हा जो है वो कैसा चल रहा है, हम जो हैं हम अपने रब को कैसे राजी कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो मानी तलब है कि हमारे घर का चूल्हा कैसा, ये मैंने बड़ी मानी खेज बात कर दी है, इसकी सेंस में डेप्थ में जाना है। जी हम इस वक्त जो है जुमा करीम की नशरियात लेके बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह करीम से हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने वादा कर लिया कि अल्लाह हम कलमा गो हैं, फिर अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं अब पर हम पर अब आ रहे हैं, तो इनको गौर और तवज्जो से हम ही ने सुनना है भाई, हम ही ने उनके ऊपर अमल करना है, क्योंकि हम तो कलमा गो बन गए हैं ना, अहले ईमान जो कलमा पढ़ लेता है दिलो दिमाग से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर तो वो ईमान वाले में शामिल हो जाता है ना, अहले ईमान वाले हो गए, और फिर मुत्तकी बनना है। मुत्तकीन की कैटेगरी क्या है, उनका हल्का जो है वो क्या है, वो भी आपसे गाहे बगाहे गुफ्तगू भी चलती रहती है, हमने खुद भी सर्च करना है, खुद भी देखना है। और ये बात अभी बात हो रही थी कि पहले अदवार में जो है बड़ा कुछ था, अब के अदवार में क्या ये कहना दुरुस्त है, या ना शुक्री के जिम्मे में आ जाता है। हमारे अबाओ अजदाद जो हैं वो जब भी थे तो तब भी उन्होंने कोई जिंदगी का शिकवा नहीं किया, उनका सिलसिला हमारे असलाफ का, माशाल्लाह हमारे दरमियान बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्होंने तो कभी आज तक ये बात नहीं की, तब तो जी बड़ा ही था, तब तो औलाद बड़ी बादब थी, आज की औलाद को अगर आप बेअदब कहते हैं तो फिर हम और आप जो हैं इतने इतने जो मनसब तक ऊपर तक जाते हैं, तो क्या आप हम लोग क्यों ना शुक्री कर रहे हैं। बहुत कुछ मैं यकीन करें कि सुन के ना, पॉजिटिविटी भी है नेगेटिविटी भी है, अब नेगेटिविटी को आप बयान कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को भी लेके आए, गुड एंड बैड दोनों हमको देखने हैं। एनीवे ये बात तो फिर मुझे बड़ी हर्ट कर जाती हैं ऐसी बातें, और फिर मैं अगर सारा कुछ करने लगूं बयान तो फिर तो मेरा प्रोग्राम बड़ा तवील हो जाएगा, जो कि मैं अपने टॉपिक की हद तक रहना चाहती हूँ, जो मैंने सिलेक्टेड आज हमारी आयात मुबारक है, ठीक है। और फिर वही दो चीजें मेरे पास हम सबके, देखिए ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए है और मेरे लिए है, हम इसको शेयर करते हैं नॉलेज, और तबादलाए ख्यालात होता है, तबादलाए गुफ्तगू होता है, और नॉलेज यहाँ पे बैठ के मैं बहुत

फोन कॉल जो है 01274306677 करके मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हो जाए और बताएं कि यहाँ पे जो नुक्ता नज़र मोहतरमा आप ऐसे बयान कर रही हैं तो ये यूं है, मैं सुनने को और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मेरा कोई भी एक भी प्रोग्राम आप चाहे वो एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो और ये हमारा जुमा का प्रोग्राम हो तो जुमा करीम का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी इसमें जब गुफ्तगू में शामिल हो कि आपको मैं ओपनली कहती हूँ कि आप बिल्कुल हमें एक दूसरे की इस्लाह करनी जी। इससे पहले कि अब मेरे भी मोबाइल के ऊपर मैं माशाल्लाह कुरान पाक की आयत मुबारका को लेके बैठी हुई तो ये भी इसकी बैटरी थोड़ी सी डेड हो जो कि मुझे और आपको पता है कि मोबाइल हमारी जिंदगियों का खासा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। तो मैं इस गुफ्तगू को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बयान करना चाहती हूँ ताकि फिर हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम भी है वो भी सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल छोड़ नहीं दिया कि जाओ जो तुम्हारे दिल में आता है करो जाके, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अब हमने फिर रब को हमने कैसे पहचाना, हम रब तक की आगाही कैसे हुई, आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कितना कुछ इस इन आयतें मुबारका में हमें आ जाता है, हमने कैसे रब तक जो है शऊर व आगाही हासिल की। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कदम कदम पर हमें अपनी अहादीस मुबारका से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। फिर लामतनाही सिलसिला देखें कि आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अल्लाह पाक ने उनको हमारे जो है वो राहबर और रहनुमा मुकर्रर कर दिया। ये अक्लो शऊर और फहमो इदराक की जो बातें हैं जो कि पूरा ही कुरान जो है वो तो अक्लो शऊर और फहमो इदराक का मंबाओ मरकज है। तो मौज़ूद इकराम ये इंशाअल्लाह ताला ऐसी सेर हासिल गुफ्तगू करने वाली आयतें मुबारका हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनको लेके हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते रहेंगे जाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 12 o'clock एक और छोटा सा सरप्राइज आपको देना है और जो मेरे वो मोहतरम सामईन इकराम के जिनका जिनको समझ आ गई है कि 12 o'clock 12 बजे उनके लिए हमने क्या सरप्राइज रखा है तो यकीनन वो भी गुफ्तगू में अगर हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो यकीनन जी आपका जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हम आवाम तक ऑडियंस तक अपने लिसनर्स तक पहुंचा देंगे और आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहें इंशाल्लाह ताला। और आप बहुत मौजूज़ो मोहतरम हमारे जो हैं मैं क्या कहूं प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं और अभी मैंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना 12 o'clock का आपके साथ सरप्राइज और आप वो सरप्राइज बेहतरीन सरप्राइज है इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे हम इंशाल्लाह ताला 12 o'clock वो आपके साथ डिस्क्लोज करते हैं। गुफ्तगू बहुत प्यारी है और मुझे पता है कि जब मेरे मौजूद सामईन इकराम बड़े इन हमाक से और कहीं ना कहीं से मुझे फीडबैक भी आती है और मिलता है कि जी आपने वो जो टॉपिक है ऐसे बयान किया तो जी उससे रिलेटेड बिल्कुल आप इससे रिलेटेड कुरान व अहादीस की जितनी और आयतें मुबारका पेश करें अपना हिस्सा डालें और कार खैर में माशाल्लाह हमारे साथ रहें जो कि आयशा अख्तर की हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप सब सुनने वाले जो हैं हम सब मिल के अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। मैं यहाँ पे बस बयान करती रहूं आप लोग अगर इस गुफ्तगू में शामिल नहीं तो फिर जी प्रोग्राम करने का क्या फायदा होगा। तो ये तो एक ऐसा नफा बख्श सौदा मैं कहूंगी कि मुअज्जज़ो मोहतरम सामईन इकराम ऐसा नफा बख्श जो कि आज जुमा मुझे पता है जुमा करीम की तैयारी में भी लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन साथ साथ ये प्रोग्राम भी आप सुन रहे हैं तो ये भी जुमा करीम ही के हवाले इसकी अजमतों बरकत और अल्लाह ताला से रहमतें लूटने का ये भी हमारे पास अनमोल और कीमती वेरी प्रेशस हमारे पास ये एक एक वक्त की कुछ मजमूआ है लम्हात का। तो उन इन जो हमारे पास लम्हात का मजमूआ इनको अल्लाह ताला के हुजूर बैठ के आजजी से इनकिसारी से बाबरकत घड़ियाँ हम सब मिलके लूटें हम सब दुआओं में शामिल हो जाएं। और मेरे मौजूद सामईन इकराम जो हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर भी भेजा है जो हमारे साथ जिनके जो नए हम हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगर शामिल गुफ्तगू हुए हैं तो प्लीज़ आप कॉल भी हमें करें और ये जो है रहमतों का बरकतों का अजमतों का आज जो

दिन है जुमा करीम, इसको अल्लाह ताला से लूटें। वो बड़े जो आशिक होते हैं वो तो ये कहते हैं कि सेल लग गई है, लूट सेल लग गई है, आज हम अल्लाह ताला को लूट लें। ये आशिकों का कहना है भाई, आप ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। और लेकिन एक आशिक किस सेंस में ये कहता है, कभी उसकी डेप्थ को फील करे कि हमने अल्लाह ताला को आज लूट से लगा दी अल्लाह पाक ने, आओ अल्लाह ताला को लूटने चले। क्या मैं कहती हूँ कि इश्क की इंतहा है। हम अल्लाह ताला वो बड़े रंग हैं जी मेरे रब के, इन शॉर्ट यही कहूँगी। हर एक का मामला अपने रब के साथ है, हर कोई अपनी सेंस में अल्लाह पाक से लगा हुआ है। मैं तो सबके जब रंग देखती हूँ मैं कहती हूँ मुझे तो खुद से मतलब होना चाहिए, सरोकार होना चाहिए, बहुत फिर अल्लाह के हजूर ताइब होती हूँ, रोती हूँ, मौला मौला करीम तेरे बंदे बंदे, तुझे तो सबसे प्यार है, तेरी तख्लीक है, अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से प्यार, सभी अल्लाह ताला के बंदे बंदी हैं। वो किस रंग में, हम किसी को जाहरी रंग में देख रहे हैं, उसका अपने रब के साथ मामला क्या है वो तो हमें पता ही नहीं होता। हमें ये पता रखना चाहिए कि बातनी जाहरी तौर पे हर बंदे बंदी का अपने रब के साथ मामला क्या है। तो

ये प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा जो है हमें स्पॉन्सर किया है हमारे ब्रदर जो हैं अकाब वाले ब्राडफोर्ड बाजार से, इनका जो है क्लोथिंग शॉप इनकी अकाब वालों की, तो बहुत खूबसूरत वैरायटी है जी उनके पास समर विंटर, और इसके अलावा जो बेहतरीन किस्म की रंगारंग वैरायटी, ये थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंस रखा जाता है कि वो क्या है, कि आप वाकई वैसे अल्लाह का करम है उनके, बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा है उनको, बहुत रश लगा रहता है, बड़े अल्लाह ताला ने उनको करम फजल से नवाजा, उनके बिजनेसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बिलखसूस जब उन्होंने मुझे ये स्पॉन्सर किया तो वाकई मुझे अच्छा लगा कि उनके पास, मैं अब ये कहूँ कि ये एक ट्रिब्यूट करती हूँ अपने ब्रदर को कि उनकी शॉप से मैंने ये बाय किया, पता नहीं वैसे मैं इधर अलाउड हूँ कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जब उन्होंने इतने प्यार से चाह से मोहब्बत से हमें स्पॉन्सरशिप किया है प्रोग्राम का ये हिस्सा, तो ज़रूर भाई हक बनता है उनका कि मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं वाकई ब्रदर मैं सॉरी करती हूँ कि मेरा फ़ोन इस वक्त जो है ना उसकी चार्जिंग फिनिश्ड है, मैं आपको कोई मैसेज नहीं कर सकती, होपफुली अल्लाह करे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हों, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था कि और आपने इस वक्त के लिए हमें स्पॉन्सर किया था, तो ये बेहतरीन किस्म की मैं कहूँगी अब वैरायटी कॉटन, मेरा फेवरेट कलर भी जो है मेरे खाना काबा का, मेरे अल्लाह के घर का कलर जो है माशाल्लाह ब्लैक कलर, उनके खाना काबा के गुलाफ का इस अकीदत से मैं बहुत अकीदत से पहनती हूँ ये कलर, और मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह, और वाकई मौज़ा सामीन इकराम अगर मेरा मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो मटेरियल इज़ वंडरफुल, वाकई स्ट्रॉन्ग है, नाइस है, और दुपट्टा जो हमारी मशरकियत की शनाख्त है तो वो मुझे बड़ा कम्फी लग रहा है, और स्काफ मुझे कवर्ड है हर तरफ से, और वैरायटी और उनकी क्वालिटी वाकई मैं कहूँगी कि आप लोगों को भी जाना बनता है। अकाब जो है akaab.com इनकी वेबसाइट है, और आई एम सो सॉरी कि मेरा मोबाइल जो है जवाब दे चुका है, उसके ऊपर उनका नंबर था, तो लेकिन आप ब्राडफोर्ड बाजार में अकाब वाले akaab.com पे जाएं, वहाँ पे मेरा ख्याल सेल भी लगा दी उन्होंने, काफ़ी अच्छी प्राइसेस है, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें स्पॉन्सर किया इस लम्हों के लिए, और मजीद उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, इन शॉर्ट वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है, बस मैं इतना ही कह दूंगी akaab.com का नाम ही काफ़ी है, आप जाएं वहाँ पे ब्राडफोर्ड बाजार में और इन्जॉय करें अपनी आयशा अख्तर ने माशाल्लाह मैं इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के अपने प्रोग्राम को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगी, अच्छा लगा, और भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें स्पॉन्सर भेजा, ब्लेस यू, और खुश रहें आप भी और हम सब भी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको ढेरों ढेर नवाजे, हम सबको अपने कर्मों फजल से खैरात अता करे। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का सदका अल्लाह पाक हमारे घरों में रहमतें बरकतें और अपना फजल नाजल करे, हमारी आल औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, नेक बनाए, और नेक तमन्नाएं सबके लिए हैं। आप सब भी हमें अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखा करें, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ गो हूँ, और ये प्रोग्राम यहाँ पे महफिल सजाई ही इसलिए जाती है कि सभी दुआ में भी शामिल हो जाएं, प्रोग्राम में भी माशाल्लाह सुने, जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो जी मौज़ा सामईन इकराम, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम मेरे सामने है, और आज अल्लाह करीम से हम डेरों डेर मांग रहे हैं तो वो ज़ात कैसी है। अभी मैंने एक कलाम देखा तो वो इंग्लिश में, फिर कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उसकी हर नेमत के ऊपर। मैं यकीन करें, मैं आपको पता है मैं प्रैक्टिकली मैं कहती होती हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है ना प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, सुनती रहती हूँ सबकी आरा लेती रहती हूँ कैसा है, मॉडिफिकेशन इसमें करना, और इन आप सबकी आरा को दुआओं को साथ लेके चलना। एक मोहतरम से मेरी मुलाकात हुई तो जी मैंने कहा आप सुन रहे थे, मैंने आपको नंबर दिया था, जी सुन रहे थे प्रोग्राम सुना, हाँ जी मैं सुन रहा था लेकिन आप आगे से इंग्लिश बोल रही थी, अच्छा
मैंने कहा इसलिए वो समझ गया, मैंने समझा सारा प्रोग्राम इंग्लिश में, तो मैंने तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं जी मुझे पंजाबी में या उर्दू में मतलब इस तरह से। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं थोड़ी दूर आगे गई और एक और जो हमारे जो जो हमें एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो करवाते हैं हमसे, एडवर्ट्स देते हैं, तो उधर गई तो वो यंग नौखेसा लड़का, तो मैंने कहा हाँ जी सुना था आपका आपने मेरा प्रोग्राम, तो वो लकीली वो उस दिन वो सुन रहा था तो वो इंग्लिश में जो सारा था, तो कहता आई रियली इन्जॉयड योर प्रोग्राम, ओ थैंक गॉड। मैंने कहा शुक्र है। तो कहता है कि आई एम वेरी प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग माशाल्लाह इन डिटेल, आई लाइक दिस, वाओ। मैंने कहा ये क्या है भाई, कुछ की आरा ऐसे होती हैं कुछ की वैसी होती हैं, लेकिन वो चूंकि और जिन्होंने कहा था कि नहीं मैंने नहीं सुना आप इंग्लिश में बात करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप कौन सा हमें एडवर्ट देते हैं, तो जब जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ की तो मैं शुक्र किया मैंने, क्योंकि उन्होंने दी इसलिए थी मुझे एडवर्ट की, देखें आप कुछ हमारे लिए भी यंगस्टर्स के लिए। आई सेड व्हाई नॉट भाई, आप तो मेरी प्रायोरिटी हिट लिस्ट पे होते हैं, क्योंकि न्यू यंग जनरेशन जो है इनके हाथों जी बाग दौड़ होती है मुल्को कौम की भी, और बहुत बेहतरीन आगे बढ़ने की भाई। खैर सारे ही अल्लाह के बंदे बंदियां जो है अपने तरीके से बहुत खिदमतें खल करते होंगे जी करते हैं। एनीवे तो वो फिर उसने बहुत पसंद किया, कहता वो उसमें बहुत कुछ मैंने कुछ थोड़ा सा मेंशन किया था, तो चूंकि वो पूछ के मुझे फिर बनाना पड़ता है ना कि आप लोग उर्दू सुना और पंजाबी का भी आप लोगों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया था कि मेरी पंजाबी माशाल्लाह अच्छी है, कुछ अच्छा लगा आपको, तो भाई मैंने फिर उसमें शुरू किए। लेकिन ये तो जुमा करीम का स्पेशली मेरा जो स्पेसिफिकली जो होता है ये उर्दू में ही होता है सारे कॉन्टेंट्स जो जितने भी होते हैं। एनीवे तो वो मुझसे मजीद उस यंग लड़के ने जी, अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी एडवर्ट है ये भी पता नहीं, यहाँ बहुत बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। एनीवे मैं अपनी लिमिट्स में ही रह के बात कर रही हूँ। तो बात ये है, फिर जो कुछ मुझे उधर से फीडबैक मिली, तो इंशाल्लाह ताला उन यंग जनरेशन के लिए अपने नए प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह वेंसडे ज़रूर रखूंगी, और कुछ और जो जुमा का नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम होगा उसमें कुछ कुरान और अहादीस की बातें जो है इन इंग्लिश इज़ वेल, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है हमारी कौम के बच्चे बच्चियों को फिर वो। और वाकई आप यकीन करें कि जब मैं उनसे उर्दू में बात करती हूँ ना टीचिंग के दौरान ही, तो फिर मैं बात उर्दू में करती, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अगर उर्दू रख लिया है तो करती करती मैं अचानक उनके चेहरों की तरफ मैं कहती यू अंडरस्टैंड, वो सबके सर नीचे इतने घंटे से मैं मगजमारी कर रही, आप लोग बता दें मुझे कि आपको नहीं समझ तो इंग्लिश में उतर आए। ये होता है बच्चे शो करते हैं कि जी शौक भी कि जी हमें आती आती है उर्दू, आप करें करें उर्दू में। तो ये बात होती है, इसी तरह से प्रोग्राम का भी हमारा होता है कि जी प्रोग्राम आपके लिए कौन सी लैंग्वेज, क्योंकि ये बैरियर नहीं रखना चाहिए, लैंग्वेज एक ऐसी है कि अगर हमें किसी की समझ ही नहीं आ रही तो फिर बात फायदा क्या होता है प्रोग्राम का। तो खैर ये बात थी कि जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी हमारे प्रोग्राम जो गए उसमें मैं इंशाल्लाह कुछ हिस्सा जो है आपके लिए इंग्लिश वर्जन जो कि कुरान और हदीस से भी मुतालिक होगा इंशाल्लाह, और जो एंटरटेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी कुछ आपके लिए हिस्सा जो है वो इंग्लिश का डाल दिया करेंगे। तो इस तरह बाकी का तो प्रोग्राम आपको पता ही आप सुनते ही हैं। तो इस वक्त मेरे सामने एक खूबसूरत सा कलाम अल्लाह करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए, और ये कलाम जो है कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है, मेहरबानियाँ करने वाला है, सबको ज़रूरत है हमें रहमो करम की, स्पेशली जिन्होंने हमें स्पॉन्सर भेजा ब्रदर आपके लिए भी ये कलाम जो है लगाते हैं, आप भी सुने प्लीज़। और हम सब क्योंकि अल्लाह जो है वो यहाँ पे लिखा है अंता अरहमुर राहिमीन, बेशक अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह करीम अरहमुर राहिमीन है, उसी से रहम मांगना है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: कि जो मुझे बताए कि दुनिया सुन रही है वाला, मगर मुझे इख्तियार नहीं ना सुबह कि तेरी रहमत को तुझे निदामत से गिरे हुए आंसू बड़े पसंद है वाला, वाला हमें माफ कर दे वाला, माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा मेरी माँ छोटी लकड़ी से आग जलाती है तो आग भड़क जाती है, मुझे डर लगता है मेरा अल्लाह कहीं मुझे इस वजह से जहन्नम में इस्तेमाल न कर ले कि जहन्नम की आग भड़क जाए, बोला मुझे माफ कर दे। ऐसे मासूम बच्चे बच्चियां तो इससे रो रो के दुआ मांगते, क्योंकि एक तेरी जात है, तू शर्मिंदा नहीं क्यों नहीं देता, तू वाले तू थाम लेता है, तेरी रहमत थाम लेती, तेरी बारगाह में रो के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, हमारी दुआओं की कबूलियत को पर लग जाते हैं वाला, हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारा ईमान है कि ये आंसू निदामत की शर्मिंदगी के हमारे गुनाहों को दो डाल ले वाला, दो डाल ले शर्मिंदगी के ये आंसू वाला, वाला एक तू ही तो है, महफिल में हो या तन्हाई में हो वाला, तुझसे रो रो के मांगने में अल्लाह बड़ा सुरूर आता है, अल्लाह यूं लगता है दिल पे मनो बोझ जो था वो उतर गया मौला, इतना बोझ बोझ महसूस होता है वाला, करीम तू जानता है, तू नियतों का हाल जानता है वाला, तू नियतों का हाल जानता है, तू बड़ा गफूर रहीम है वाला, तू बड़ा अता करने वाला है वाला, हाजरी ने महफिल में से कोई तो तेरी बंदी बंदा ऐसा होगा जिसको जिसकी अदा तुझे बड़ी पसंद होगी वाला, उसके वास्ते इस महफिल को कबूल करके हमारे गुनाह दोगे, हमारी दुआ हिलत जाए, हमारे बच्चों के हक में कबूल कर ले वाला, हमसे जालमीन हासदीन पिशेमान कर दे उनका खाता, या अल्लाह हर जालमीन हासदीन बुरी नजरें दूसरों को देने वालों का खातिमा कर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया में फैलाने की बड़ी जरूरत है अल्लाह, अल्लाह मासूम लोगों की बड़ी जरूरत है अल्लाह, इस दुनिया को तेरी रहमत की बड़ी जरूरत है वाला, वाला हमें ईमान पर सलामती रख और खात्मा बिल ईमान करना जब दुनिया से जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाला हमारे अहबों को हमारे अहबों पे पर्दा डाल दे अल्लाह, हमारी मजबूरियां अल्लाह बहुत कुछ देखने को मिलता है और कुछ कि जो मजबूर है बेबस है एक रोटी के लिए मासूम बच्चों को, किधर से मैंने कूड़े के ढेर से रोटी के टुकड़े उठा के खाते देखा वाला, वाला सर शर्मिंदगी से इतनी नशुकरी वाला आप नहीं करते, तेरी नशुकरी अल्हम्दुलिल्लाह जो तूने दिया वाला उनको भी दे, खुला रिज़्क दे जिन जिन को जरूरत है, जहाँ कहीं भी मजलूम मुसलमान है जहाँ कहीं भी अल्लाह जरूरतमंद है उनको रोटी की जरूरत, अल्लाह दे दे उनको रिज़्क खुला दे दे अल्लाह, अल्लाह जिन जिन के पास बहुत कुछ देने को है तेरे रास्ते में हम सबके दिल मेरे समेत हमारे दिल वसी कर दे, गनी कर दे हमें, हम तेरी राह में खुले दिल से अल्लाह दे, खुले दिल से दे, और तेरा तो वादा है एक दस दस तू देता है रिटर्न में वाला, वाला कुछ समझ नहीं आ रही वाला क्या मांगे, इस वक्त इतना है कि तू हमारी तरफ देख रहा है, हमारी महफिल पे तेरे करम के बादल छाए हुए हैं वाला, वाला बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना, आज खाली हाथ ना लटाना, हमारे दिलों की छुपी हुई दुआएं जो कुन की मुंतजिर है फयकून कह दे, और किसी ने क्या खूब कहा ये आंसू ऐसे ही तो नहीं आ जाते वाला, वाला तुझसे तेरा कुरब मांगते हैं, तेरा इश्क मांगते हैं, तेरे नबी का इश्क मांगते हैं, मुझे से बेबस मजबूर एक नातवा बंदी जो तेरी महफिल में बैठी, वाला मुझे तो इतना पता है कि तू गफूर रहीम बहुत, तेरी रहमत बहुत वसी है अल्लाह, अपनी रहमत में हमें छुपा ले मौला, हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत दे दे, और तू ही सबर देने वाला है, तू ही अता करने वाला है, और मौला मौला जब हम इतनी शर्मिंदगी और नदामत से युद्ध से मांगते हैं ना, यकीन है ईमान है बिल्कुल मेरे सुनने वालों के लिए भी, वो यूं थामता है ना। हाँ अल्लाह तेरी रहमत को बड़ा करीब पाते हैं, हमें इसी की ज़रूरत है वाला, तेरी रहमत की, तेरे फजल की, तेरे करम की। अल्लाह हमारी झोलियाँ भर दे। अल्लाह अगर ये तौफीक दी है इतनी प्यारी, मैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। करम है तेरा, तेरी रहमानियत का करम मौला, मेरे दिमाग में आया, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं मौला। एक तो वो महबूब है ना हमारे, तेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौला ऐसा भी तो हो जाता है ना, अल्लाह करीम हम भी तो तेरे महबूब बंदे बंदियाँ बन जाए, और हम भी आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदे बंदियाँ बन जाए। हम भी आज पूरी महफिल पे लुत्फ़ो करम हो जाए, हमें भी अपने महबूब बंदे बंदियों में शुमार कर ले मौला। हमारे बच्चों को, हमारे घरों को खुशियों से, रहमतों से, रहमतों से, राहतों से भर दे मौला, राहतों से भर दे। तो अल्लाह हमारे हमारे दिलों दिमागों में, आँखों में नूर भर दे अपना, हमारी आँखों में, चेहरों पे, हमारे या अल्लाह हमारे उफकार पर, कल्बो जिगर पर, हमारे जाहिर बातिन पर अपने नूर की स्टैंप लगा दे, अपने नूर की स्टैंप लगा दे। मैं तर्जमा अब कुरान पाक का, मेरी रूह काम गई, मैं बड़ा बिलख बिलख के रोई। वो सुना मेरे सामने आया, तर्जमा में सुन रही थी, जो फरिश्ते जान अल्लाह करीम, अल्लाह तू जानता है दोनों ग्रोह के बारे में, अल्लाह हमें उन ग्रोह के बारे, उन ग्रोह में शामिल कर ले कि जब निज़ा के वक्त हो और ऐसे आसानी से जान निकलती जैसे मशकीज़े में से पानी गिर गया, ऐसे उन लोगों में हमें भी शुमार कर दे माला, उन लोगों में शुमार कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह आखिरी वक्त में कलमा नसीब करना, और इस कलमे को हम अपनी जान बना ले। अल्लाह हमारे अल्लाह, अल्लाह पाक मेरी घड़ी पे नज़र जा रही है, यकीन कर सामईन इकराम के दिल करता, इंशाअल्लाह ताला मौला करी ये कल्बे हजूरी जो है, ये महफिल पे जो रंग है ना, ये हमारा बचा के रख ले, और हमें यही हिस्सा जो है तन्हाई में अता करना, ऐसे ही अल्लाह पाक, ऐसे ही गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक बड़े तेरे करीब हो के, तू हमारे करीब हो के हमारी दुआएं सुने। ये देख लो अल्लाह पाक, अब हमने तुम्हारे साथ ये एक जो है, ये लम्हे जो है, एक अमानतन रखवा दिए, हमें ये अता करना तन्हाई में अल्लाह, क्योंकि अब तो महफिल का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, और सभी के ऊपर ऐसी वारिफ्तगी, ऐसा प्यार, मोहब्बत जो है वो शामिल कर देना अल्लाह, और हमारी हर नमाज जो है वो तहज्जुद जैसा मर्तबा रखे, जैसे तहज्जुद में तू अपना कुर्ब अता करता है अल्लाह करीम। और ये तेरी अता है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, ऐसा ही है ना, कितने राज की बातें हैं इसमें, कितने राज की बातें छुपी। अल्लाह अल्लाह जमील वयुहिब जमाल, अल्लाह जमील वयुहिब जमाल, करीम अल्लाह करम कर दे। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين ثم آمين يا رب العالمين، آمين ثم آمين يا رب العالمين. جي بالكل اس وقت آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ یہ درود و سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں.
1: اسرار دعا، جہاں ہر دعا بن جائے عبادت.

0: जी, मतलब 100 मिलीग्राम बहुत ही खूबसूरत इस वक्त एक ऐसा कलाम मेरे सामने है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा बहुत सुकून मिलेगा ये खूबसूरत कलाम सुन के। इंशाअल्लाह ताला हम सबको बहुत ज़रूरत है, बिलखसूस मुझे भी बहुत ज़रूरत है ऐसा कलाम सुनने की। आइए जुमा करीम के दिन ये खूबसूरत कलाम सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
1: असरारे दुआ, जहां हर दुआ बन जाए इबादत।

0: فليعمل عملا صالحا فليعمل
1: عملا. You are listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
4: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset.
7: Sheffield और इसके अतराफ में नमाज़े ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है।

0: samawan.com.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अज़हरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। यू आर लिसनिंग टू लिंक एफएम,
2: म्यूजिक, कम्युनिटी, कन्वर्सेशन एंड पॉजिटिव वाइब्स। दिस इज लिंक एफएम ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक।
3: This is Link FM. Link FM.
4: तक तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लटक गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और तर पतंग मैं संग सा।

0: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड। हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abed Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahan.
11: My name is Rizwan Ishwak.
12: My name is Asham.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
5: The voice of the communities. 96.7 Link FM.
6: Link FM.

0: चाहत की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड,
3: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
4: और हर सूर दिल को छो जाए
2: वही है लिंक एफएम,
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: Sheffield's very own community radio station.
1: Link FM.
2: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
3: This is Link FM. Link FM.
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
5: लिंक एफएम शेफील्ड।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Your number one for news in Sheffield, Link FM.

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस।

0: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। लिसन लाइव ऑनलाइन एट linkfm.org। लिंक एफएम।
2: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: today, tomorrow, every day. Sheffield's Link FM.
1: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
2: जहां बातें बनते हैं, वही है लिंक FM। दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield।
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM। मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM।
5: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM। दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
3: और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक FM.
2: दिल से आपके साथ
1: लिंक FM Sheffield.
4: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
1: लिंक FM Sheffield.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

Jupiter or Viking or whatever. पेट्रोल का पैसा रास्ते में नाश्ता दिमाग का भेजा है ना रास्ते का भरोसा ना मौसम का भरोसा कौन भरेगा पैसा

0: the NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You're listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: खून का बदला है खून। तबरेज ने कैस के वालिद को कत्ल किया और कैस ने तबरेज को। कानून का तकाजा है कि कातिल को सजाए मौत दी जाए, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि एक सौगवार बेटे के जज्बात को भी मद्देनजर रखा जाए। कैस की जगह कोई और होता तो वो भी शायद अपने बाप के कातिल को जिंदा ना छोड़ता। इसलिए हम तुम्हारे साथ रियायत बरतेंगे कैस। सजाए मौत की बजाय हम तुम्हें शायद बदर करते हैं। हमारी सल्तनत छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ।
8: ये रियायत नहीं जहां पना, सितम है, कहर है। आप मुझे सजाए मौत दे दीजिए, लेकिन इस तक सजा मत दीजिए।
7: तुम दीवाने तो नहीं? हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं और तुम उसे सजाए मौत से भी ज्यादा सख्त पाते हो।
8: आप मेरी जान नहीं बख्शे जहां पना, मेरी जान को मुझसे जुदा करके जिंदा रहने का हुक्म दे रहे हैं। मौत दे दीजिए, लैला से दूर है कि जीने की सजा ना दीजिए।
7: ये लैला कौन है?
9: मुझ बदनसीब की बेटी है शाहिद नज़्म, सरवरी खानदान की इज्जत, जिसे ये बेगैरत रुस्वा करने पे तुला हुआ है।
8: गलत, बिल्कुल गलत। लैला मेरे जीने का मकसद है, मेरी जन्नत है वो। मैं वो सर जमीन छोड़कर कैसे चला जाऊं जहां मेरी जन्नत बसी है, जहां पना। सारी जिंदगी उसके गिर्द तवाफ करूंगा, या तो उसको हासिल करके रहूंगा या उसके कदमों में दम तोड़ दूंगा।
7: ऐसा दीवाना आशिक तो हमने आज तक नहीं देखा। इसका इश्क तो एक जुनून है, अच्छा खासा मजनू है।
9: इस दीवाने की बेहुदा हरकतों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है शाह नज़्म, निजात दिलवाइए।
7: सिपा सालार, इस मजनू को हमारी सल्तनत से बाहर निकाल दो, और अगर ये दोबारा इस शहर में नजर आए तो हर खास वाम इसे पत्थर मार मार कर निकाल दें।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your number one for news in Sheffield. Link FM.